थो रडे नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जिउ पेसपा खिजिना थिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सव पिकुद बचलागा द्वितीया राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सङ्घु अध्यादेश जारी याना दिगुदु राष्ट्रपति पौडेल नेपाल या संविधान कथा मन्त्रिपरिषद या सिफारिस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान या नेपाल एन्यात संशोधन यागो अध्यादेश 2083 सार्वजनिक पदाधिकारी या पद मुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 हो विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल एन्यात संशोधन यात देकुगु अध्यादेश 2083 मिग जारी यानादिगु राष्ट्रपति ज्याको प्रवक्ता रितेश कुमार साक्य पिटनादिगु विज्ञप्ति नेतनातगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मन्त्रिपरिषद सिफारिस सार्वजनिक पदाधिकारी या पदमुक्त या विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 जारी या तुङ्का थिति निकाय या पदाधिकारी पदमुक्त जुयादिगुदु नेपाल वायुसेवा निगम एन 2019 कत नियुक्त नाय नोकु सञ्चालक व महाप्रबन्धक नाप नेम पदाधिकारी पदमुक्त जुगुदु राष्ट्रिय समाचार समिति राष्ट्र सयन 2019 कथ निम सञ्चालक व गोर्खापत्र सयन संस्थान एन 2019 कथ नाय व सञ्चालक याना सोम पदमुक्त जुगुदु चलचित्र निर्माण प्रदर्शन व वितरण एन 2026 कथ चलचित्र जाँच समिति या नाय व दुजो याना सोम व सञ्चार संस्थान एन 2028 कथ नाय व सञ्चालक याना निम पदमुक्त जुयादिगुदु अथे प्रेस काउन्सिल एन 2068 कथ अध्यक्ष ओ दुज याना झिम ओ श्रमजी पत्रकार समिति एन 2051 कथ नाय ओ दुज याना खुम पदमुक्त जुगुदो दूरसञ्चार एन 2053 कथ नियुक्त प्राधिकरण या नाय ओ दुज याना नियाम ओ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एन 2053 कथ पेम पदमुक्त जुगुदो विद्युतीय कारोबार एन 2063 कथ सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण व पुनरावेदन न्यायाधिकरण या खुम पदाधिकारी व सूचना या हक सम्बन्धी एन 2064 कथ प्रमुख सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त याना सोम पदमुक्त जुगुदो विज्ञापन नियमन यागु एन 2076 कथ नाय व दुज याना खुम सुरचन मुद्रण सम्बन्धी एन 2081 कथ नियुक्त सोम व सार्वजनिक सेवा प्रसारण एन 2081 कथ नाय व दुज याना चिन नियाम पदाधिकारी मुक्त जुगु ख थौ हलिन्याङ्क प्रेस स्वतन्त्रता दिवस हनाचङ्गुदु स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेस नीति विन्ड हक घोषणा पो जारी यागु लुम्ती मे 3 तारिक यात प्रेस स्वतन्त्र दिवस रूपमा हनाचङ्गु ख सन् 1993 सन् युनेस्को या गोस्या अफ्रिकी दे नामिबिया या विन्ड हक सरे जुग वरिष्ठ पत्रकार पत्रकारिता या प्राधक पी व स्वतन्त्र या पक्ष धर्पिन गुबोती थोक घोषणा पो जारी यागु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सञ्चार जगत या त संविधान प्रदत्त अधिकार या पूर्ण प्रयोग रक्षार्थ निर्भयपूर्वक सक्रिय ज्या आम नागरिक या त सत्य सूचना सम्प्रेषित या त सुता ल्यामा तका पिन्तुना देश नादिको दु विश्व प्रेस स्वतन्त्र दिवस मे 3 2026 या लसत्या थौ नेपा व नेपा पिने दुपी सकल पत्रकार नाप नेपाली जनता या त पिन्तुना देशना दिसे वेक्ला थथे हेव्यादिको ख थोयदोती उपराष्ट्रपति राम शाह प्रसाद यादव सामाजिक सञ्जाल पाके विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे 3 2026 या लसता संविधान सुनिश्चित आगो प्रेस स्वतन्त्र पत्रकार व सञ्चार कर्मी या अधिकार जुगु नेतादिगो दु थिति समसामयिक विशेष सहल या त थौ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या सचिवालय मुजा चुनितेङ्गु दु पार्टी या प्रवक्ता मनिष झा या कथ थौ सुथे चिन्सता इले पार्टी या केन्द्रीय ज्याकु घन्टी घर वनस्थली मुजा चुनितेङ्गु ख पार्टी सभापति या उच्च खत पार्टी सचिवलाई मुजा चुनितेङ्गु ख मुजा स्थानीय तह उम्मेद्वार छनौटपुर रेखा 2083 त मुजा ज्या धल 2083 संसदीय दलीय विधान संशोधन नाप या विशेष मुजा सल जुइतेङ्गु ख सोनिग या बागमती नाप साग खुसी सिथे चुङ्गु अतिक्रमित बस्ती चिकेकु ज्या मिग नन्यागु दु सङ्घीय सरकार हो ए महानगरपालिका संयोजने सोह्र वडा बालोजी चुङ्गु बिस्मती खुसी व धोबीखेला खुसी सिथे चुङ्गु छे व तहराची कुगु ख ए महानगरपालिका 15 स्वयम्भू लागे अतिक्रम छे टहरा चिकेगु ज्या न्यागु ए या साग प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल धाइदिगु ख
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मङ्सिरे एकता राष्ट्रिय त मुजिया गोसा गुएगु कोचु गुदु पार्टी या मिग केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति या मुजिया मङ्सिर 11-15 गते तक ए त मुजिया या तेङ्गु ख साउन मसान्त तक पार्टी दुज नुदा यागु वो सदस्यता बिगु अभियान ह्याकेगु भदौ 15 गते तक वडा भदौ 16 गते तक मसान्त तक पालिका असोसे जिल्ला वो कार्तिक 15 गते तक प्रदेश त मुजिया यागु पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला धाइदिगु ख अथे मुजिया संविधान पिङ्केगु ज्यासना पुच निसेङ्गु निसुनेगु वेक्ल खनादिल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति या मुजिया सोमबार चुनितेङ्गुदु पार्टी केन्द्रीय ज्याकु या कार्यवाहक मुख्य छ्यान्जे कृष्णप्रसाद दुवाल या कथ सोमबार हिनेसिया छताइले केन्द्रीय ज्याकु सानिप्पा एले मुजिया चुनितेङ्गु ख सरकार देनयङ्क या सडक सुरक्षा प्रणाली नीतिगत एवं संरचनागत सुधार या त प्रतिबद्ध दुगु धागुदु बिबा रोल्पा या थवाङ गाउँपालक एक सजुगु जीप छाक्या निम सिगु छाकापति दुःख पङ्कु से सरकार छाका या छानबिन समितीय प्रतिवेदन याक्न छेलबुला हेगु नाप धागुदु कृषि तथा पशुपन्छी विकास वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी मुक्त कमैया लिसे या पङ्ग जेङ्केत आया सरकार प्रतिबद्ध दुगु नेतादिगु दु मुक्त कमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुर या गोसेम मिगजुगु जियाजोले मन्त्री चौधरी मुक्त कमैया हलिया हरुवा चरुवा वो कमलरिया अधिकारी या ल्वापी सरकार ह्याप्ने नाप नाप दुगु नेतनादिल हुलाकी राजमार्ग कथ सिराउ धनुषा स्वाइगु कमला खुसी देका तगु अस्थायी डाइभर्सन चुइकु गुली यातायात सञ्चालनले पङ्ग जुगुदु सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी चेतराज बराले कथ खुसी खुसीबा ओ गुली ज्यायात थाकुया चङ्गु थाइदिगुदु कमला खुसी देका चुङ्गु ता आप्लो धनिसे कोचाके मफुगुली वा वैगुले स्थानीय पिन्त डुङ्गा छेले या मागु पङ्ग जुया चङ्गुदु नेपाली सेना जिल्ला प्रहरी ज्याको सल्यानिया छे देखेगु झोले जग तेगु झोले लुयाओगु शङ्कास्पद झोल निष्क्रिय यागुदु सेना गुइपेङ्गु आइडी 900 ग्राम विस्फोटक पदार्थ निगु किलो 9 वो 6 मिटर फायरिङ केबल सुरक्षित रूपमा डिस्पोज यागु सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशालय धागु ख छुदी वोगु वा या हुने चल कुतु वया अरेनीको राजमार्ग पङ्ग लाना चुङ्गुदु वैशाख 16 गते सिन्धुपाल्चोक या फोटेकुसी गाउँपालिका 2 कोदारी या इकु चल या हुने पङ्ग जुगु केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्ले धाइदिगु ख बागलुङ्गा कोठेकोला गाउँपालिका 2 भीममा पोखरा वो काठेकोला गाउँपालिका 4 तग्राम स्वाइगु डुडिया घाटे पक्की ता देखुगु दो गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कथा सङ्गु करोड खुइनिगु लाग्दा लागते ता देखुगु ख विश्व शान्ति या अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध या जन्म जयन्ती युरोपले दे पोर्चुगलेन तजेक हङ्गुदु नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पोर्चुगल या गोसिया राजधानी लिस्बनी विशेष ज्याजोएना बुद्ध जयन्ती हङ्गु ख लिस्बन या आन्जोसे चङ्गु जिनासियो क्लब या हलेको सागोगु ज्याजले बौद्ध धर्म गुरुपिनसँग बुद्ध विशेष पूजा आराधना यागु ख उगु छोले बौद्ध धर्मगुरु फुरी शेर्पा बुद्ध या ज्ञान दर्शन वा उपदेश लिसे विशेष प्रवचन बिहादिगु ख बुद्ध जयन्ती या भिन्तुना पुङ्का दिसे पोर्चुगल नीति नेपाल या राजदूत प्रकाशमणि पौडेल मानव जातीय नीति बुद्ध या ज्ञान वा शिक्षा त अमूल्य जुगु धाइदिल वेक्ल बुद्ध या प्रेरणा उपदेश वा मार्गदर्शन या त व्यवहारिक जीवनी नाला सत्कर्मे लपुई वनी मागुली बिहादिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान छोगु योजना याक्न दुवालेगु धाइदिगुदु वेक्ल सहमति जुइ धक्का थया त फलसा मधुकु नेतनादिगुदु इरान अमेरिका या त सल या नीति चिनपेङ्गु बुद्धि योजना छोगुदु थो योजना आकुन मयागु भलसा समुद्री नाकाबन्दी चिकेगु वो लेबनन नपुङ फुक मोर्चा ल्वापु कोठे
लेगु प्रस्तावको अघनात अगुदो थोएदो थु इरान या इस्लामिक क्रान्तिकारी सुरक्षा बल अमेरिका विरुद्ध या ल्वापु हाक्न ह्याफैगु धागुदो अमेरिका छुन सहमति वा सन्धिप्रति प्रतिबद्ध मधुगो धासे थपी तयारी अवस्था दुगुन यथङ्गुदो थुके इजरायली सेना लेबनाने आक्रमण यानाचोङ्गुदो मार्च दुई थुके लेबनाने निकुस वा नेगुम लेबनानी नार्क सिरङ्गुदो थौ दे या पहाडी ओ हिमाली लागा खसु खनिदैगु व तराई लागा पच्चा खसु खनिदैगु दुकुमा यागुदो हिमाली ओ पहाडी लागा ओ मधेश कोशी प्रदेश या तराई या पच्चा थासे ओ ल्यौदुगु तराई लागा छगुनीको थासे नन्याना वा नाप च्वापु क्वा वै फैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदो मिग सोनिगले नि सोङ्गु डिग्री सिवे चुए थेङ्गु क्वाज थौन थोल्याखे थाहा हुनेगु तुकमा यागुदु थौसुते न्याता इजुया छिन च्यागु मिनेटे लुगु सूर्य सनिलया खुता इजुया पि न्यागु मिनेटे बि नेपाल भाष्य समाचार कोचाल सुभा

हजुर जोजलपा युपा हगु नुग सज्या जो जोना जिरु श्रेष्ठ वे धुना निनामे भाजु मे जु पि अले थौ प्रेस ओल्ड फ्रिडम डे ख थुक्याल सता ह्याप्पी ओल्ड प्रेस फ्रिडम डे त कान दै जोना थो थो हलिनिङ कना चंगु थो पत्रकार तेकु विश्व रेडियो दिवस लस्ता एक एक भिन्तु ना देश नाचो न अले थोए दास निनामी भाजु मेजु पि थौ न जी छमा पहा भाजु बना वै गुदु यो पहा गुनु गस ज्याजोले अले थो ज्याजो न्याकेता जिता पि यागु मिनेट तक जिमी मा प्राविधिक पासा मोहम्मद असलम मगले ब्याचना दिक दु दास ज्याजो न्याका चना गुजुल जिरु विश्रेष्ठ अले निनामी भाजु मेजु पि थो ज्याजो त छिसा www.radionepal.gov.np वो रेडियो नेपाल या फेसबुक पेज पाखे अले रेडियो नेपाल .gov.np अनलाइन पाखेन चिसाने ना दि फुदासा थो ज्याचो या त चिसा आइतबा पतिका सुतसिया जिता इजुया पि यागु मिनेट तक निना दि फु अले थो ज्याचो या त चिसा माया मतिना ना फोन या ना दि गु ख स फोन ल्याख 42 11 7 21 42 11 7 36 क अले थौ न जिन्छमा पहा भाजु बना वै गुदु पण्डे सुदर्शन राजोपाध्याय वै क सरोद बादक ख ओ लोकम भामा अले वै कया गु मे त न दु एल्बम त न दु वै के मे न ने अले वै कना पन सल ब्याके अले थो ज्याजो त छ रेडियो या थिति फ्रिक्वेन्सी पाखे ने ना दिगु खस 98 100 103 मेगा हर्स छिस हलेनियङ चना ने ना दिफु अले जिना पाछी पासा दुसा जिन चाहिँ फेसबुक पाखे न फेसबुक या गु रिल पाखे न लाइभ याना चना चनागु जुल उकि अन पाखे न सोया दिफु दासे आदसा छिनेवा ते गु राष्ट्रिय मेन्य ने मेना प्रपाञ्चित नलसकुसैया अलि थया मपहा बाजु यता नलसकुसैया

रेडियो नेपाल हिन ग्रीष्मास शेर्पाने शेर्विकेकी साङ्ग्योर सेनोनाङ आरिङ जम्बोलिङला प्रेस स्वतन्त्रता तुसेन चिङवा स्वतन्त्र तेजेन बहुलवादी प्रेस के तन्दगला बिन्द हक घोषणा पत्र ख्याफेल क्याउ निमे ठेन्सोला लोटेङमा मेला कि तारिक सुम्के छिर्मु जम्बोलिङला प्रेस स्वतन्त्रता तुसेन च्याफिएन

0: लसो फ्याफुल्ला रेडियो केताङ मुगलान लगे अर्थात् वैदेशिक रोजगार रिराङ द डेनमुला ङा सूर्य मक्तान वैदेशिक रोजगार बोर्ड लुनखाङ न रोहरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल से सुबाचु गेताङ सातला तिरेम दिनी रे आइतबार कुनु चुनुन दुईरी प्रसारणलाई बन्खा पमुला तिनीलाई गेताङ मुगलान नगेरी मकवानपुर जोङला माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर एमआरसी अर्थात् आप्रवासी स्रोत केन्द्र सेसेङमनखाबा गेखोर गदेला फेरि जानकारी पिन्छेलमुला ओसेम नुप एसिया थुम्लाई हुल्दी गेलाबारी निभिदा छार गेलाबारी निभारी अर्थात् श्रम स्वीकृति ठङमा ताम्नन् तिनीलाई गेताङरी थान्छेलमुला चुनुन गुङरी सरकारसे बिना वैधानिक प्रक्रियाका देछो नला सचेकेन फिर्क्या भ्युली गेलाबारी निबारी मोइजनला बत्ताम्ला छ्यामछ्याम्री वैदेशिक बोर्ड लुनखाङला महत्वपूर्ण सूचना थिएन साङ्गुरका देनुन तिनीलाई गेताङली थानमारी बाङ्ला सलमला गेताङ लिच्छा दोनाङ्यानमारी राङ्दा मोइजनमला
1: सरकार से नुप एसिया थुम्ला हुल कादेरी निभा गे लावा मिदा छार थेन देपेन गे लावारी निभाला स्वीकृति पिनबा निर्णय लाबामुला सरकार से नुप एसियारी ठुङबा आच्याबा अवस्था दा ध्यान पिन्सी निभा फागुन लाला चुइनिस लाकुन हेन्से लागु लावा लासी साउदी अरब युएई कतार कुवेत बहराइन ओमान इराक एमन जोर्डन लेबनाइन टर्की थेन इजरायल राङबा हिल्डी बेनान खाल्ला गे लावारी निवाला स्वीकृति आपिन्ना काबा मोबा दाते विसाम इराकरी बीमा स्यान्दो युल्डी गे लाबारी निभा स्वीकृति पिनबारी वाङबा मुला दाते व्यक्तिगत संस्थागत थेन वैधानिककरण राङबा बेनान खाल्ला गे लाबारी निवाला स्वीकृति नाछालन राङ लासी पिनबान खाबा मुला बिसी सुङबान मुला गे रोजगार थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोनखाङला सुङबोन पिताम्बर घिमिरे
0: श्रम स्वीकृति आपिन्ना कासी थान बम्बुबा थे युल्डी लेबा आजेबा अवस्था से निबारी आपिन्मा बुसाइनुन थे दुईरी गेलाबारी निबाला छार स्वीकृति पिन्दोजी बिसे लामन माध्यम गदे गम्से पाङमा रेखाबा मेगदे लामन मुबा चुतामदा च्याबारी बिसे लोलो लोलो ब्लोनखाङला दान पगदे मुबा रोङसा ब्लोनखाङला लोन्छेनला थुतबुन्डी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम सोबुमुला दान्दिजा थिनुन टिम से थे युल गदेला अवस्था गोसी जिम्माले छ गेलाबा मि पुइसला ताबे हिन्ना ओसेम लामन मिसे लामन मोइजेन लामन खाबासे चुबे
2: इराकरी
0: गेलाबारी मि आपुइबा थेन श्रम स्वीकृति आपिन बहिन्ना तसैनुन इराकरी गेलाबा मि आपुइबा निर्णय लाबा बिमा गाछ हेन्छन् इराकरी गेलाबन खाबा लुलु लुलु कारण थेन बिदाला दुइरी नेपाल देखा सिटीबा थेन थेन्ना अझैनुन भिसा बाँकी मुबटे मिसाम थेराङमा मिगदे दजाङ अनि से पुइसिटीबा मुला थेतापछि दान्दे इराकरी छार गेलाबा मि पुइसिटीबा आरे नत देपेन तिला ताम्पाङे भानमा मुला बिसाम इराकरी गेलाबन मुबा मि नेपाल देखा सिटीबा मुला थेन थेन्ना गेलाबा भिसा अझैनुन बाँकी मुला बिसाम थेन्ना लामन खाल्ला कागज पत्रका दिच्यासी थेन्दा पुइबन खाप मुला ओसेम अर्को गाला तिला मैजन मुला बिसाम फिर्क्या भ्युली गेलाबारी निबन मुला बिसाम नेपाल सरकार से गेलाबारी मि पुइबा हुल गदेरी याङला हुल्ला थिम थेन बेनान प्रक्रिया गदे छोनाला सिचकेन निबारी गाला मैजन मुला यदि हुल्ला थिम थेन सी थेन प्रक्रिया गदे छोनाला सी आनिसाम फिर्क्या भ्युली गेलाबा दुइरी खाजी बैनन समस्या तासम तिलाई अप्ठ्यारो तासम रोलाबारी आखामा मुला थिरानुला सी फिर्क्या भ्युली तिलाई समस्या तासम थे युल्ली मुबा ग्लेबन खाङ थेन रोङसा ब्लोन खाङरी सम्पर्क लाबारी गाला मैजन अवसर खलङ खलङ मुबटिम बिसी च्याबारी खाम्ब मुला गे ब्लोनखाङसे नुन गे थेन रोजगार सम्बन्धी बिना निजी थुम थेन गे पिनमा गदे गे माइबा गदे गे पिनमा एजेन्सी थेन तालिम पिनमान खाबा गेन्दुन गदे त श्रम संसार ठिम्री दर्तला बारी मोइजेल लाप मुला तिलै दुई गाछ चिकन गोर्खेको सूचना छिसे ब्लोनखाङ गामला बिना डिजिटल टिम गदेदा श्रम संसारी थान्से रोजगार टिम द कोङबा सोभन बोर्सेला मुला बिसी ब्लोनखाङ से पाङबा मुला ओसम फिर्का फिल्टी गेलाबा दुईरी खाजी बैनुन खाल्ला समस्या तासम पाइयानुन रोकिन्दो बताजी बिसाम श्रम संसार डट जीओभी डट एनपी रिमोबा आपतकालीन सहायता विभाग बटन रि क्लिक लासी च्याबरिनन खाम्बमला जुरानुलासी विभाग से फिर्क्या भ्युली गेलाबारी मिपुइबा टिम प्रक्रिया अनिवार्य थानबारी वैदेशिक रोजगार विभाग से इजाजत पत्र किन्मा गेन्दन गदिदा निर्देशन पिनमा मला वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 अनुसार गाछन स्वीकृति किन्मा लिछ चेकेन गेलाबा मि दाम्बा प्रक्रिया तिदोबा टिम सोभमला इजाजत पत्र किन्मा गेन्दन गदेसे नेपाली ग्योइरी रेदाङ से छिबान खाबा राष्ट्रिय स्तरला सोसोरी च्याङ्नारिनुन साता घिकला म्याद पिन्छ विज्ञापन छिदोबा थेन छिबा विज्ञापनलाई आधारित तोकलाबा योग्यता थेन अनुभवलाई आधारित गेलाबा मि दाम्दोबा ताम्लाबा मुला थेलिछा गेलाबारी दाम्मा गदेदा भिसा पिनमा प्रक्रिया तिसी भिसा खाबली छ गेलाबाला स्वीकृति पिनमारी सम्बन्धित विभागले पेश लादोबा ठिम्मुला धरम बिसाम तिरिला सन्दर्भरी वाङ्गे निबत चैत लानी मकवानपुर जोङला ग्यार्जकुसे मेन्दकुची ब्लि मिसे श्रम स्वीकृति किन्मताम विभागला तथ्याङ्क से हुन् बमला निबै नोर्दिङरी तोङचुई से घा ग्यार्ज ब्लिसे मेन्दो निस मिसे गेलाबारी निबारी विषय स्वीकृति किन्मा मला चु तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुर जोङयाम फिर्का भ्युली गेलाबारी निबमी लेबन खापा म्राङबा मुला गोर्खीको उपमहानगरपालिका गोर्खीको नगरपालिका थेन गोर्भ्रे गाउँपालिका मुबा चु जोङला प्रशासन गेदेम गाम्री माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टर एमआरसी अर्थात् आप्रवासी स्रोत केन्द्रलाई गेदेम नुन ठाङबा मुला केन्द्र से फिर्का भ्युली निबारी सेमला बा थे निबारी छे बगा देता रुहला बन खापा मुला खास दन्दे केन्द्र से खारङमा खारङमा गेतङ गदे सिंसी तिल तिल सेवा गदे पिनमान खापा मुलम गोर्खेक रिपोर्ट
1: फिर्क्या फ्युल्डी निसी गे लातोबा दाते बेना नेपाली बेउन कादेला बाध्यता थिएन रहर गोर्गिनन दोषी झिन्बा मुला तसै देनबा सूचना थिएन प्रक्रियाला ज्ञान आतामा लानन बेउन कादे ठगिरी परब तावन खाबाएनुन म्राङबा मुला ओसेम ठगी लाबा राङबा समस्या दा च्याङना लाबारी सरकार से बेनान जोङला जोङ प्रशासन गेदिम्री आफ्रावासी स्रोत केन्द्र ठ्वाङसी लानन खाल्ला सेवा कादे पिनबान खाबा मुला केन्द्र से पासपोर्ट सोबारी खाबा कादेदा ज्यावा ग्याम उन्सी पिनबाला छ्याम्री फिर्क्या फ्युल्डी निसी लाबा गेदा खरङ लासी सुरक्षित सोबारी खाम्बा मुला ओम विवाद ताम्री परामर्श पिनबान खाबा मुला थेराङबन परामर्श कादे पिनबारी बिसी जोङ प्रशासन गेदिम मोकवान पुर्री एनोन आफ्रावासी स्रोत केन्द्र ठ्वाङसी लानन खाल्ला सेवा कादे पिनबान खाबा मुला थे केन्द्र से दाते खारङबा खाल्ला सेवा पिनबान खाबा मुला ओम केन्द्रला जोङ गेताङ थुतबोन अञ्जिता थापा मगर
2: आप्रवासी स्रोत केन्द्रले जिरा भरे
1: आप्रवासी स्रोत केन्द्र सेजा जोङरी पासपोर्ट सोबारी खाबा धुइरिन फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी निबा बिमा गाछा तिला तिला तामकादे सेतोबा थेन गोतोबा मुला बिबा राङबा लानन तामकादे लोपन खाबा मुला चुनाउन लासी गेलाबारी निबान मुबा मेन पावर कम्पनीला अवस्था खाराङबा मुला गेलाबारी बिसी निबान मुबा ह्युल्डी निवारी सरकार से श्रम स्वीकृति पिनबा मुला कि आपिनबा मुला तिला गेलाबारी निबा हिन्ना बिबा राङबा तामकादे सेना थेन गोना लाबान खाबा मुला ओसेम खाजीबैनन मिदा गेलाबा ग्लारी खाजीबैनन खाल्ला समस्या ताबा मुला अन्याय ताबा मुला बिसाम रो लाबारी थेन न्याय पिनबारिनोन स्रोत केन्द्र से बङ लाबान खाबा मुला स्रोत केन्द्री फिर्क्या भ्युल्डी गे लाबारी निवारी छे बाकादे जेखेन आखाबा मुला फिर्क्या भ्युल्डी अलपत्र ताबा थेन ठगिरी परब ताबा कादे से न्याय माइबारी थेन न्याय याङबारी खामलाकी विवाह आशा लासी खाबा मिकादेनोन लानन खाबा मुला थेराङबा पीडित कादेदाजा छिमला ग्याम उन्सी पिनबा थेन रो लाबा गे परामर्श दाता कादेसे लवन खाबा मुला केन्द्र से लवन खाबा गे थेन पीडितला अवस्थाला फेरि सुङबान मुला परामर्श दाता आप्रवासी स्रोत केन्द्र से जा फिर्क्या भ्युल्डी लावन खावा गेदा सुरक्षित व्यवस्थित थेन उपलब्धि ताबा खाल्ला सोभारी विशेष लासी सरकारला इज्जत किन्बा मेन पावर ग्याम सम स्वीकृति किन्सी जेखेन नितोबा मुला खाजीबैनोन एजेन्सी थेन एजेन्टला ताम यान्सी फिर्क्या भ्युल्डी निसाम ठगिरी परब ताबारी खाम्बा मुला ग्रेन ग्रेन समस्यारी परब ताबारी खाम्बा मुला थेन राङदा गे लाबा मि रिबा डिमान्ड खाबा मुला बिसी नकलिकी देनबा ताम लाबा हिन्ना विवा तामेनन चेकलासी पिन्सी रोलाबन खाबामुला ओसेम कतिपय भिसा गादे दातेम फेक भिसा खाबामुला थे फेक हिन्ना कि देनबा हिन्ना विवा तामला प्रमाणीकरण लाबा गेनन सुस्रोत केन्द्र से लाबन खाबामुला दाते लिछाला धुइरे नकली श्रम स्वीकृति सोसी टाङ्गा चाबाकादे लानन मुला थेसे लामा गान्सेजा सक्कलिकी नक्कली विवा च्यासी पिनबन खाबामुला ओसेम राङ थेन मुबा बेनान कागज पत्रकादे सुरक्षित लासी थानबारिनोन मोइजेन लाबन खाबामुला फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबारी निमा सिप लोप्सी जेखेन नितोबा मुला बिसी पाङबन खाबामुला चुराङ लासिन फिर्क्या भ्युल्डी गेलाबा धुरी खाजिबाइनोन समस्या तासाम अप्ठ्यारो तासाम ठगेरी परब तासाम अन्याय तासाम थेन अलपत्र ताजी विषाम गेलाबा मिला समस्या दा छाङना लासी पिनबाला छ्याम्री अलपत्र ताबा कादे दाजा उद्धार लासी पिनबान खाबामुला
3: पनि आफ्नो स्रोत केन्द्र गरिराखेको छ
1: केन्द्र से रोलासी पिनबासे राङदा ठगब लाबा मुसाइनोन राङला टाङ्गा याइसी किनबारी खाम्बा ताम मेन्दो गिक पिडिचे गानिदा पाङबा मुबा रोसे केन्द्रदा स्थानीय त अर्थात् ओडाथेन टोल टोल डिनोन चुराङबा केन्द्र ठ्वाङसी पिन्साम ज्याबा तासेदा मुबा बिसी पाङबा ताम गानिदा पाङबा मुला रोसेजा एजेन्से फिर्क्याब ह्युल्डी पुइमा गाला टाङ्गा चाबा मुबा आप्रवासी स्रोत केन्द्र से बङ लसी पिनबासे गाला टाङ्गा याइसी किनबारी खाम्बा हिन्ना बिसी सुङबा मुला मेन्दोगिक एजेन्से गदा ठगब लाबा मुबा थे ताम्दा बोर्सी गा आप्रवासी स्रोत केन्द्र री निबा मुबा गदा थे केन्द्र से गाला टाङ्गा पिनपुङबारी खाम्बा हिन्ना गाला टाङ्गा चाबा दाजा माइसी फोन लासी होइस लाडो लिचा गाला टाङ्गा पिनबुङबा मुबा फिर्क्या भ्युल्डी निसी लाबा गेदा अझ ज्यावा सोबारिजा गाराङबा तिलाइनन था आरेबा मिदा लानन तामकादे सेना गोना लासी लोप्सी पुइसाम ज्यावा तासेदा मुबा बिबा ताम गादा मानबा मुला गाइजा खाप्पा ह्युल्डी निबा हिन्ला तिला गे लातोबा हिन्ला खाराङ लासी लातोबा मुला बिबा राङबा तिलाइनन ताम था आयाङबा मुबा गाइजा लाडो लिचा जेखेन थेराङबा तामकादे था याङबा मुबा थे ताबासे चुराङबा आप्रवासी स्रोत केन्द्र कादे बेनान ओडा ओडारी थेन टोल टोल डी ठ्वाङसी पिन्साम ज्याबा तासेदा मुबा बिबा गदा मानबा मुला मोकवानपुर जोङरी जेखेन आहिन फिर्क्याब ह्युल्डी गेलाबारी निबाला मिन्डी छेउ आछेउ करो ढु टाङ्गा ठगी ताबाला उजुरी खाबा मुला चु समस्या प्रशासन दा लानन ग्रेन चुनौती ताबान खाबा मुला सामी परियोजनाला रोरी ठगी नियन्त्रण लाबारी थेन पीडित दा न्याय पिनबारी प्रशासन सक्रियतासी गे लबान खाबा मुला बिसी सुङबान मुला मकवानपुर जोङला ग्रेन जोङ अधिकारी बसन्त अधिकारी
0: फिर्क्या भ्युल्डी गे लबारी निबा मिसे पासपोर्ट सोसी जिनमा लिछा राङखापा ह्युल्डी निबा हिन्ना तिले गे लबारी निबा हिन्ना थे गे लबारी खामला कि आखाम बिबारङमा लामन आधारभूत ताम गदे दा लोप्से पिनबा मुला उसेमचु जोङ याम्से फिर्क्या भ्युल्डी निसे गे लबान खाबा ब्योन गदेला अवस्था ठगी लबा ताम थिन लामन खाला समस्याका देशे लामन ग्रेन ग्रेन चुनौती गदे काप्सी टिप
1: सुरक्षित सोबारी राङडोन सचेत ताबा भीमा स्यान्दो खाजिबाइनोन विकल्प आरे फिर्क्या भ्युल्डी निसी लाबन खाबा गेदा सुरक्षित सोबारी सरकारी बङथेन स्रोत केन्द्रला भूमिका लानन महत्वपूर्ण मुला थे फिरिनोन खापै बिमा ग्रेन ताम बिबा गे लाबारी निवान मुबा मि राङनोन सचे ताबारी खामदोबा मराङबा मुला
0: चुनुन रिपोर्ट ल छ्याम छ्याम्री तिनीलाई गेताङ यामेनुन फेसिनिबा दुई तासे जिनमा मुला गेताङ मुगलान ला गे अर्थात् वैदेशिक रोजगारी ला फेरि राङलातीलाई सल्लाह सुझाव थिएन प्रतिक्रिया गर्दै मुला बिसाम गणिला इमेल ठेगाना वेलफेयर एट feb.gov.np थिएन info@feb.gov.np इमेल लबरी राङ्द मोइजेन मला तिनीलाई गेताङ यान सुबारी राङ्द लामा लामन थुजे छे खाबा साथारी छार विषयरी छानुन गेताङ बासी खासेला मला थेइ दुई दोनादा नाना इन्दिरा थिङ थेङगा सूर्य मोक्तान्द बिद दुन्छुगु लासु फ्याफुल्ला
4: नेपाल टेलिकमको 4G

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँ सुनल जा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल किछु नेपाल ऐनके संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 जारी कयलनि अछि। नेपाल के संविधानके धारा 114 के उपधारा एक बमोजिम मन्त्री परिषदके सिफारिशमे ई अध्यादेश जारी कयने राष्ट्रपतिके कार्यालय जनौलक अछि। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सार्वजनिक पदाधिकारी के पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी किछु नेपाल ऐन के संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 आ विश्वविद्यालय सम्बन्धी किछु नेपाल ऐन के संशोधन करयवला अध्यादेश 2083 जारी कयलनि अछि। राष्ट्रपति पौडेल मन्त्री परिषद के सिफारिश में शनि दिन ई तीनटा अध्यादेश जारी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेतृत्व के सरकार प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण आ राज्य निकाय के नया गति देबाक उद्देश्य के संग उठौने ई कदम संगे विभिन्न ऐन आ संरचना अंतर्गत राजनीति नियुक्ति भेटल कुल 1594 गोटे पदाधिकारी एक मुष्ट रूप में पदमुक्त हैत। प्रधानमंत्री के संचार सहजकर्ता सुरेंद्र बजगाई पदमुक्त पश्चात खाली पद में सरकार नया नियुक्ति प्रक्रिया आगू बढ़ात से जानकारी दिलन। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाली संचार जगत के संविधान प्रदत्त अधिकार के पूर्ण प्रयोग आ रक्षार्थ निर्भयपूर्ण सक्रिय भा आम नागरिक के सत्य सूचना संप्रेषित कर सब दिन सफलता प्राप्त हो कामना कयलनि अछि। स्वतंत्र पत्रकारिता से सत्य के अन्वेषण आ अहि तथ्य के संप्रेषण क समाज में सही आ सत्यवाद के स्थापित करबाक लेल विशेष ध्यान देबाक चाही पर ओ जोर देलनि। ओ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के शुभकामना दैत ई कामना कयलनि अछि। हरेक वर्ष मई 3 तारीख के विश्वभरि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि बीच उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव विश्व प्रेस

सब मुद्रित या प्रसारणमे मात्र सीमित नै रहि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना प्रवाह तीव्र भऽ रहल बतौलनि। एल्गोरिदमके प्रभावके कारण सत्य समाचार सब समस्यामे पड़ित आयल आ भ्रामक समाचार आगू अयबाक चुनौती सेहो थपायल गेल, ओ बतौलनि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने उद्योगी व्यवसायी के डर आ त्रास में नहीं पड़क के लिए आग्रह कलन आ निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सब संग के भेंटघाट में ओ सरकार के उद्देश्य निजी क्षेत्र के हतोत्साही बनेबाक नहीं भ नीतिगत सुधार करबाक रहल स्पष्ट कलन। सभापति लामी झा ने सरकार के सुशासन अभियान के साथ देबाक लेल आग्रह करत सरकार उद्योगी व्यवसायी संग सहकार्य कगू बढ़ चाहने बतौलन। यद्यपि अर्थतंत्र के कमजोर बनावे वाला गतिविधि में राज्य कड़ाई के संग निगरानी राखत से हर कहब चलन बीतल समय राजनीतिक अस्थिरता परिवेश के कारण व्यवसायी सब विभिन्न शक्ति केंद्र के दबाव में पड़ल घटना के सरकार आत्मसात केने चर्च करत ओ आब एहन अवस्था नहीं दोहरा तेमें निर्धक भक रहल आश्वासन दिलन। सभापति लामी झा ने वर्तमान सरकार निर्वाचन के समय जनता समक्ष कने वाचा पत्र के आधार पर संचालन हेबाक दावी कलन। ओ उद्योगी के अपन कमी कमजोरी मूल्यांकन करबाक लेल आंतरिक लेखा परीक्षण के विगत में कने गलती सब के ठीक कक राज्य संग सहकार्य करबाक लेल सुझाव दिलन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा स्वतंत्र प्रेस बिना सुशासन पारदर्शिता आ जन विश्वास सुदृढ़ नहीं भ सकत बतौलनि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई शुभकामना संदेश दैत संचार मंत्री तिमिल सिन्हा स्वतंत्र निष्पक्ष तथा जिम्मेवार प्रेस लोकतंत्र के आधार स्तंभ भेला सँ ऐसे सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करबाक लेल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करय पड़त बतौलनि। संचार माध्यम केवल सूचना प्रवाह करय वाला माध्यम मात्र नहीं भ राज्य राजनीति प्रशासन निजी क्षेत्र आ समाज के जवाबदेही बनाबय वाला प्रमुख संस्था भेला सँ स्वतंत्रता संगे उत्तरदायित्व के सेहो गंभीर भक वहन करबाक चाही बतौलनि। संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा नेपाल के संविधान प्रत्याभूत केने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट करत स्वतंत्र प्रेस बिना सुशासन आ पारदर्शिता मजबूत नहीं भ सकत धारणा रखलन। संगे ओ प्रेस स्वतंत्रता संगे जिम्मेवारी तथ्य प्रति प्रतिबद्धता व्यवसायिक मर्यादा तथा सार्वजनिक हित प्रति के उत्तरदायित्व ओतबे महत्वपूर्ण रहल बतौलन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आई जनकपुर धाम में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कक मनायल गेल। नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा के अगुवाई में आई भिनसरे प्रभावित फेरी कार्यक्रम सम्पन्न भेल। बैनर सहित निकलल पत्रकार तथा मानवाधिकार कर्मी सब के रैली सहित के प्रभात फेरी कार्यक्रम में सहभागी भेल पत्रकार सब नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कने छल। शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण मानवाधिकार विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता के प्रवर्धन मूल नारा के संग नेपाल पत्रकार महासंघ के सभाकक्ष आयोजना कल गल कार्यक्रम में सहभागी भेल वक्ता सब स्वतंत्रता प्रेस बिना मानव अधिकार तथा शांतिपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की कल्पना सेहो नहीं कायल जा सकत बतौलन। वक्ता सब स्वतंत्र प्रेस मार्फत कोनो देश में सुशासन तथा समृद्धि के लक्ष्य हासिल कर कारणी प्रेस ऊपर के कोनो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं हाथ बतौलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के प्रमुख बुद्ध नारायण सहनी स्वतंत्र प्रेस बिना कोनो शासन प्रणाली जन मैत्री तथा मानवाधिकार मैत्री नहीं भ सकत बतौलन। नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा के अध्यक्ष पूरण शाह के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राम भरत शाह नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश के महासचिव सुरेन्द्र महतो क्रांति धौंसा के उपाध्यक्ष अवधेश कामत सहित के वक्ता सब अपन अपन व्यक्त करने चले थे। शहरी विकास मंत्रालय काठमांडू के बागमती और सहायक नदी किनार में जोखिम प्रेस स्वतंत्रता दिवस आई जनकपुर धाम में विभिन्न कार्यक्रम की आयोजना कक मनायल गेल। नेपाल पत्रकार महासंघ धौंसा के अगुवाई में आई भिनसरे प्रभावित फेरी कार्यक्रम सम्पन्न भेल। बैनर सहित निकलल पत्रकार तथा मानवाधिकार कर्मी सब के रैली सहित के प्रभात फेरी कार्यक्रम में सहभागी भेल पत्रकार सब नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कने छल। शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण मानवाधिकार विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस
स्वतन्त्रता के प्रवर्धन मूल नारा के संग नेपाल पत्रकार महासंघ के सभाकक्ष में आयोजना कैल गेल कार्यक्रम में सहभागी भेल वक्ता सब स्वतंत्रता प्रेस बिना मानव अधिकार तथा शांतिपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की कल्पना सेहो नहीं कैल जा सकत बतौलन। वक्ता सब स्वतंत्र प्रेस मार्फत कोनो देश में सुशासन तथा समृद्धि के लक्ष्य हासिल कर

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए किया वापस। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी अध्यादेश लागू। 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं, कानून मंत्रालय की द्वारा जानकारी। बागमती और सहायक नदियों के किनारे जोखिमयुक्त बस्तियों के स्थानांतरण से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की शहरी विकास मंत्रालय ने की अपील। भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुमवासियों की जांच हुई शुरू। अतिक्रमित संरचनाओं से हटाए गए नागरिकों के लिए इसी साल के चैत मासांत तक सभी व्यवस्था करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार से आग्रह। और इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश 2083 जारी किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद कार्य कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि पहला संशोधन अध्यादेश 2083 को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा जारी प्रेस की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 14 वैशाख को राष्ट्रपति के पास आया था और इसके विषय वस्तु पर पुनर्विचार के लिए इसे मंत्रिपरिषद को लौटाया गया है। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले इसी विषय से संबंधित विधेयक 25 आषाढ़ 2082 को प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया गया था, जिसे संदेश सहित वापस भेजा गया था। साथ ही 2 मार्गशीर्ष 2082 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार प्राप्त समान अध्यादेश भी जारी नहीं किया गया था। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए 8 अध्यादेशों में से 7 जारी किए जा चुके हैं, जबकि संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए वापस किया गया है। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी विशेष व्यवस्था अध्यादेश 2083 जारी होने के बाद 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कल जारी किए गए अध्यादेश की धारा 2(1) के अनुसार पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुए हैं, ऐसा कानून न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्रालय ने बताया है। मंत्रालय द्वारा आज सार्वजनिक किए गए अध्यादेश में उल्लेख है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति में चाहे जो भी शर्तें, सुविधाएं और कार्यकाल निर्धारित किए गए हों, अध्यादेश लागू होते हुए अपने पद से स्वतः पदमुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अध्यादेश की धारा 2 की उपधारा 2 में कहा गया है कि पदमुक्त किए गए पदाधिकारी को संबंधित मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पदमुक्ति की सूचना देंगे। यह अध्यादेश जारी होने के साथ ही विभिन्न कानूनों और संरचनाओं के अंतर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाए कुल 1594 पदाधिकारी एक साथ पदमुक्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और राज्य के निकायों को नई गति देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सचिवालय की बैठक ने निर्णय लिया है कि हाल में हटाए गए अतिक्रमित संरचनाओं और सुकुम्बासी बस्तियों से विस्थापित नागरिकों के लिए इसी साल के चैत अंत तक भोजन, आवास, स्वास्थ्य सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आग्रह किया जाए। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वनस्थली में आज हुई बैठक के बाद प्रवक्ता मनीष झा ने जानकारी देते हुए कहा कि सुकुम्बासियों का डेटा संकलन करने के लिए अधिकार संपन्न प्राधिकरण गठन होने तक अधिग्रहित संरचनाओं को छोड़कर अन्य स्थानों पर घर या संरचनाएं तोड़ने के लिए डोजर का उपयोग न किया जाए। प्रवक्ता झा ने बताया कि अतीत में सरकार ने इस समस्या के समाधान पर गंभीर ध्यान नहीं दिया था और उनकी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासियों को व्यवस्थित रूप से बसाने की पहल की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नदी किनारों पर वर्षा के समय बाढ़ का खतरा रहता है, इसलिए वहां रहने वाले सुकुम्बासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना आवश्यक था। पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में प्रवक्ता झा ने स्पष्ट किया कि विभिन्न सरकारी निकायों में पहले की गई नियुक्तियों की प्रक्रिया और आवश्यकता की

0: से बनाई गई संरचनाओं को हटाया गया। ये बात काठमांडू के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल ने बताई। इसके अलावा धोबी खोला नदी कॉरिडोर के अंतर्गत अनाम नगर, देवी नगर, विष्णुमती नदी के किनारे स्थित बालाजू माछा पोखरी क्षेत्र तथा तिलगंगा क्षेत्र में भी अतिक्रमित संरचनाओं को हटाने का अभियान जारी है। उनके अनुसार अब तक काठमांडू घाटी में लगभग 2300 से अधिक अतिक्रमित घर और संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। पिछले शनिवार से काठमांडू के थापाथली, सिनामंगल, कैरी गांव और भक्तपुर के मनोहरा क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमित संरचनाएं और सुकुम्बासी बस्तियां हटाई गई थीं। इस दौरान प्रभावित परिवारों को कीर्तिपुर, बालाजू और भक्तपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। शहरी विकास मंत्रालय ने बागमती और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित जोखिम युक्त बस्तियों के स्थानांतरण प्रक्रिया से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की अपील की है। मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा में सहायता की आवश्यकता वाले और वर्तमान में सड़क पर भटक रहे नागरिकों से त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में बनाए गए प्राथमिक पंजीकरण केंद्र में उपस्थित होकर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया गया है। वास्तविक भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों से भी पंजीकरण केंद्र में उपस्थित होकर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की शिक्षा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों के सुरक्षित, व्यवस्थित और दीर्घकालीन पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुम्बासियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय के सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि इस प्रणाली के माध्यम से ये जांच की जा रही है कि सुकुम्बासी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम पर देश के किसी भी स्थान पर जमीन है या नहीं। उन्होंने बताया कि फिलहाल शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार काठमांडू घाटी के सुकुम्बासियों की जांच की जा रही है और इसके बाद क्रमिक रूप से पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसी बीच मंत्रालय ने भूमि संबंधी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कर्मचारी, तकनीकी जनशक्ति, पेशेवर कौशल, तकनीक और अन्य संसाधनों की जानकारी देने के लिए देश के सभी 753 स्थानीय निकायों को पत्र भेजा है। रासोपा अध्यक्ष रवि लामिछाना ने उद्योगपतियों से न डरने का आग्रह किया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से बातचीत में कहा कि सरकार और रासोपा से डरने की जरूरत नहीं है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ और नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स समेत निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने रासोपा और मौजूदा सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में जो डर और आशंका का माहौल दिख रहा है, उसी को देखते हुए उन्होंने ये संवाद शुरू किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार का इरादा व्यवसायियों को परेशान करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यवसायियों के कारण सरकार को सख्ती करनी पड़ी है और समस्याओं के समाधान के लिए रोडमैप तैयार है। मौके पर उद्योग संगठनों ने स्थिर माहौल और निवेश प्रोत्साहन की मांग की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल पत्रकार महासंघ ने आज माइती घर से बानेश्वर तक रैली निकाली। मानवाधिकार आयोग ने प्रेस स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी की और इसे मानव अधिकार का हिस्सा बताया। पत्रकार संघ और कानूनी प्रतिनिधियों ने प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया। सरकार विद्यालय क्षेत्र के सुधार के लिए संघ और स्थानीय तहों के बीच समन्वय को प्रभावकारी बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विद्यार्थी नामांकन शुल्क और विवाद के संबंध में स्थानीय सरकार और सरोकार वालों के साथ विचार विमर्श करेगा। ये जानकारी मंत्रालय ने दी। त्रिशूली मैलुंग सैफ्रो वेसी रसुआगढ़ी राजमार्ग के सैफ्रो रसुआगढ़ी खंड में तेजी से स्तरोन्नति का काम चल रहा है। नेपाल सरकार ने चीन के साथ व्यापार को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क सुधार का काम शुरू किया है, लेकिन सैफ्रो बेस

0: मैलोंग खंड में काम अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है। ठेकेदारों की देरी के कारण ठेका रद्द कर पुनः प्रक्रिया शुरू करने में समय लगने से कार्य प्रभावित हुआ है। 80.4 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में नेपाली सेना ने कुछ हिस्सों में ट्रैक खोल दिया है। अब नए कटिंग, भूस्खलन रोकथाम, नाली पिचिंग और 20 से अधिक पुल बनाने की योजना है। कांति लोकपथ में भरेंग डाडा पर मौजूद भूस्खलन का मलबा हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। अन्य प्रमुख राजमार्गों पर भी यातायात सामान्य है। नेपाल चीन सीमा पर स्थित रसुवागढ़ी नाके से पवित्र धार्मिक स्थल मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थयात्रा शुरू हो गई है। अब तक लगभग 300 तीर्थयात्री चीन के केरुंग नाके के माध्यम से मानसरोवर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसा रसुवा के टिमुरे स्थित आप्रवासन कार्यालय ने जानकारी दी है। कार्यालय के कार्यवाहक प्रमुख मेघनाथ शर्मा के अनुसार इस वर्ष भारतीय, रूसी और ब्रिटेन के नागरिक भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइली सेना ने आज दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा है। कम से कम 1000 मीटर दूर खुले इलाकों में जाने की चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक सेना ने कहा कि वो दक्षिणी लेबनान के 11 कस्बों और गांवों पर हमला करेगी। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट के अनुसार सेना का दावा है कि ये कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है। सेना का यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के विरुद्ध है क्योंकि उसने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। सेना ने चेतावनी दी कि जो भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों या उनके ठिकानों के पास मिलेगा उसे खतरा हो सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश पुनर्विचार के लिए किया वापस। सार्वजनिक पदाधिकारियों की पदमुक्ति संबंधी अध्यादेश लागू, 2082 चैत 12 से पहले नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हो गए हैं, कानून मंत्रालय द्वारा जानकारी। बागमती और सहायक नदियों के किनारे जोखिमयुक्त बस्तियों के स्थानांतरण से छूटे नागरिकों से शीघ्र संपर्क करने की शहरी विकास मंत्रालय ने की अपील। भूमि अभिलेख सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक सुकुम्बासियों की जांच हुई शुरू। अतिक्रमित संरचनाओं से हटाए गए नागरिकों के लिए इसी साल के चैत मासांत तक सभी व्यवस्था करने का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सरकार से आग्रह। और इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों को तुरंत घर खाली करने की दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: 4G LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
2: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
3: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको सञ्चार।